0: एक नहीं दात आपस जो पाइए नानक साकरमात साहिब तुठे जो मिले महला दूजा।
1: एक नहीं चाकरी जित पर कसम न जाए नानक सेवक आड़ी जिससे ती खसम समाए पौड़ी नानक तुझा पुनी।

चंद सूरज मुख दिए मरण जीवन कौ धरती दीनी एत गुण विसरे सिद्ध साधक अर जोगी जंगम पीर पुरुष बहुत रे जे तिन मिला तकीरत आखा ता मन सेव करे कागद लूण रह कृत संग पानी कमल रह ऐसे भगत मिल है जन नानक तिन जम क्या कर कागद लूण रह कृत संग पानी कमल रह ऐसे भगत मिल है जन नानक तिन जम क्या कर वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। राम कली महला पहला सुरत शब्द साखी मेरी सिंगी बाजै लोक सुने पत झोली मंगन कहताई भिखिया नाम पढ़े।

चागड़ दंग नागड़ दंग बाज चागड़ दंग नागड़ दंग बागड़ दंग बाज चागड़ दंग।

रंग प्रंग अनेक न जापन करत बा, जी अंदर जियो सब किस जान लाओ, सब किस तेरे वास तेरा कर पला, तेरे कर नंद वधाई तुद कर, मान महत्ता तेज अपना आप जर।

परोस आया कृपा आया। तुम करहो दया मेरे साईं, तुम करहो दया मेरे साईं, ऐसी मत दीजे मेरे ठाकुर, ऐसी मत दीजे मेरे ठाकुर।

राग गुजरी महला चौथा। हर की जन सतगुर सतपुरखा, बिनो करो गुर पास। हम कीरे किरम सतगुर सरनाई, कर दया नाम प्रगास। मेरे मीत गुरदेव मुको राम नाम प्रगास। गुरमत नाम मेरा प्राण सुखाई, हर कीरत हमरी रह रास रहाओ। हर जन के वड भाग वडेरे, जिन हर हर श्रद्धा हर प्यास। हर हर नाम मिले तृप्तास, मिल संगत गुण प्रगास। जिन हर हर हर रस नाम न पाया, ते भागहीन जम पास। जो सतगुर शरण संगत नहीं आए, त्रिग जीवे त्रिग जीवास। जिन हर जन सतगुर संगत पाई, तिन तुर मस्तक लिखिया लिखास। धन धन सतसंगत जित हर रस पाया, मिल जन नानक नाम प्रगास। राग गुजरी महला पंजवा। कहि रे मन चितवहि उद्दम, जां अहर हर जियो परया। सैल पत्थर में जंतु पाए, ताका रिजिक आगे कर तरया।

चिर भयो दर्शन देखे, बहुत जन्म बिछुरे थे माधव, यह जन्म तुम्हारे लिखे, कह रविदास आस लग जीवा, चिर पर

संत जना मिल हर जस गायो, कोट जन्म के दुख गवायो, जो चाहत सोई मन पायो, कर कृपा हर नाम दिवाय, सर्व सुख हर नाम वडाई, गुर प्रसाद नानक मत।

0: हल्ले पहले के लिखे टुंडे सराजे की तुनी श्लोक महला पहला बलिहारी गुरी अपने देव हाड़ी सदवार जिन मानस ते देवते किए करतरा लागी वार महला दूजा
1: जे सौ चंदा उग है सूरज चढ़े हजार एते चानन होंदिया गुरबिन कोर अंधार महला पहला
0: नानक गुरु न जितनी मन अपने सुचेत छुट्टे तिल बुआड़ ज्यों सुजे अंदर खेत खेत अंदर छुट्टिया कहो नानक सौ नाहा फलिए फुलिए बपुड़े
1: पीतन विच सुवाह पौड़िया पी।

दान महंडा तलीखा जे मिले त मस्तक लाई है कूड़ा लाल छड़ियो एक मना लगते आई है फालते वे हो पाई है जे वे ही कार कमाई है जे हो वे पूर्व लिखा था धूड़ तिना दी पाई है मत थोड़ी सेव गवाई है मत थोड़ी से।

गोर जहाज खेवट गुरु गोर बिन तरिया न कोए गोर प्रसाद प्रभ पाईया गोर बिन मुक्त न होए।

आनंद नित मंगल, गौर दर्शन सफल संसार, संसार सफल गंगा गौर दर्शन, पारसन परम पवित्र गत।

मन सुसहज सुभाय, दर्शन परसे गुरु के, जन्म मरण दुख जाय। होवे सिफत खसामंदी, नूर अरसों कुरसों चटी, तुद डिठी सचे पातशाह, मल जन्म जन्म दी कटी। सज्जन सच्चा पातशाह सिर सहांदे, जिस पास बैठिया सोही है, सबना दा विसाहु। सज्जन सच्चा पातशाह सिर सहांदे, जिस पास बैठिया सोही है, सबना दा विसाहु। सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी, तनासरी महला चौथा, मेरे साहा मैं हर दर्शन सुख होए, हमारी बेदन तू जानता साह, अवर क्या जाने कोई। मेरे साह मैं हर दर्शन सुख होए, हमारी बेदन तू जानता साह, अवर क्या जाने कोई। रहाओ साचा साहिब, सच तू मेरे साह, तेरा किया सच सब होए, झूठा किस को आखिए साह, दूजा नाही कोए। सबना विच तू बरतदा साह, सब तुझ है त्याव है दिन रात, सब तुझ ही थाव हो मांग दे मेरे साह, तू सबना कर है एक दात। सब को तुझ ही विच है मेरे साह, तुझ ते बाहर कोई नाहे, सब जी तेरे तू सब सदा मेरे साह, सब तुझ ही माहे समाहे। सबना की तू आस है मेरे प्यारे, सब तुझ है त्याव है मेरे साह, ज्यों भावे त्यों रख तू मेरे प्यारे, सच नानक के पातशाह। सबना की तू आस है मेरे प्यारे, सब तुझ है त्याव है मेरे साह,
ज्यों भावै त्यों रख तू मेरे प्यारे। सच नानक के पातशाह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तनासरी महला चौथा। मेरे साहा मैं हर दर्शन सुख होए। हमरी बेदन तू जानता साहा। अवर क्या जाने।

झूठे झूठा मुख वसै नित नित होए खुआर सूचे एह ना आखिया बहन जे पिंडा तो सूचे से नानका जिन मन वसया सोई पौड़ी।